गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम।

0: So that brings us to the end of the current episode of Radio Sai Bhajan Classroom. If you have any queries or comments, please feel free to write to us. Send your emails to listener@radiosai.org. The audio engineers for this program are Sunil and Abhishek, and the background score was done by another alumnus from Chennai, T.S. Ramakrishnan. We offer this endeavor with gratitude at the lotus feet of our most beloved Bhagwan.
1: You were listening to an episode of our program Radio Sai Bhajan Classroom. This episode was first aired on the 7th of July 2016 as part of Thursday Live from Prashanthi Nilayam on Asia Stream of Radio Sai Global Harmony. This program was hosted by Team Radio Sai's Bishu. Thank you and Sai Ram.
2: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
3: Bhagwan Sri Satya Sai Baba ne सन 1973 के ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में श्री आदि शंकराचार्य विरचित भज गोविंदम पर महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। इन प्रवचनों में भारतीय आध्यात्मिकता और वेदों का सार भरा हुआ है, जिन्हें सबको सुनकर लाभान्वित होना चाहिए। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 18 जून 1973 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
4: भूमिका। शंकराचार्य के एक शिष्य विरचित श्लोक के आधार पर भगवान बाबा ने इस प्रवचन में ईश्वर के सगुण स्वरूप की महत्ता को निरूपित करते हुए उसमें निहित एकता से साधकों को अवगत होने का उपदेश दिया है। स्वामी ने पसलनाथ और विहंग वाहन शब्दों के माध्यम द्वारा ईश्वरीय एकता को बड़े ही सुबोध ढंग से स्पष्ट किया है। स्वामी का कथन है कि लौकिक विषयों के आकर्षण की बदहजमी के शिकार साधक के लिए निर्मल चित्त से की जाने वाली साधना ही औषधि है। स्वामी ने विशेषतः इस प्रवचन में सत्संग की महत्ता को उजागर करते हुए उसे अत्यंत उत्तम साधना मार्ग निरूपित किया है।